0: बसंत को माया लुहावा चलता, 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर त दिए के होलन है ना। हो ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो
2: सताने सामी सिते।

0: लागि विगत चार दशकदेखि सेवारत अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर
1: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनका गर गहना
0: हार मंगलसूत्र छड्की तिलहरी मिनी तिलहरी औठी सिक्री टप झुम्का चुरी टिकिया चन्द्रमा किलिप पंखे चन्द्रमा विभिन्न किसिमका जन्तर लगायतका सम्पूर्ण गरगहना
1: सुन चाँदी खरिद बिक्री र पुराना गरगहना साटफेरका लागि अमृत सुन चाँदी पसल
0: रेडीमेड एवं अर्डर अनुसारका आधुनिक र परम्परागत आकर्षक गरगहना
1: चाँदीका सामान र राशि अनुसारका पत्थरका लागि
0: अमृत सुन चाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर प्रोप्राइटर रविलाल विश्वकर्मा अमृत विश्वकर्मा फोन 066-5251
1: मोबाइल 97460-00454
0: शुद्धता र विश्वसनीयता हाम्रो प्रतिबद्धता
2: समिच्यों चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी जा मुई खाता लिखे हमरो
3: खै खै बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
4: आंगी समिच्यों लोटी पढ़ी हूँ छांता ही गुदी
3: बढ़ दिया आप बढ़ दिवा लोटर खाले पढ़ दिम बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खै बिसा खै मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खै मई एपिल खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खै मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
5: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
3: राष्ट्रको शान किसान
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी